महूर्त देख के कर दे। घर बनाना हो घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे, जां कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी दा काम होवे, ता इंसान सारिया तो पहला दिन देखदा है, तारीख देखदा है, महीना देखदा है, साल देखदा है, मुहूर्त देखदा है। ए काम इस महीने इस तारीख नू करना है, इस वेले करना है, ताकि सारिया नू बुला लवां, किधरे कोई नाराज ना हो जावे कि मैनू नहीं बुलाया। गुरु साहिब जी कहंदे ने, ऐ इंसान तू हर काम महूर्त ते कीता, दिन देख के कीता, साल देख के कीता, पर मरण लगिया तू कोई महूर्त ना देखिया, कोई तारीख ना देखी, ए ना सोचिया इस दिन इस तारीख नू इस महीने इस मुहूर्त नू मरा, सारिया नू दस दया ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि मैनू नहीं बुलाया। साहब जी कहंदे ने, ऐ इंसान हर काम तू महूर्त दे कर सकदा है, पर जड़ी मौत है ए महूर्त नहीं देखन देंदी। मरण ना मुहूर्त पुछया, पुछी थित ना वार, मौत ने ना दिन देखन दिता, ना तरीक देखन दिती, ना कोई महीना देखन दिता। बस इना ही पता लगा, चंगा भला सारे परिवार नु मिल के घरों तुरिया कि मैं चलदा आ जावांगा वापस, घरों ते तुर पिया। परिवार नु मिल के बड़ा खुश है, पर की पता सी कि जांदियां जांदियां रस्ते विच ही परमेश्वर दा हुक्म आ जाना। घर वाले कारू डिगदे पए ने, आ जाणगे शाम नू, मेल हो जाएगा, पर क्या पता सी उस तां वापस नहीं आना, पर उहदी मौत दा सुनेहा जरूर आ गया। रस्ते विच जांदे हैं, हुक्म आ गया परमेश्वर दा, आया हुक्म पार ब्रह्म का, उस अल्लाह उस पार ब्रह्म दा हुक्म आ गया, जांदियां जांदियां रस्ते विच ही हुक्म आया मौत हो गई। साहब जी कहंदे ने, बड़ा कुछ बनाया, हाली मन दे चाव भी पूरे ना होए, पर जद हुक्म आया तां छोड़ चलिया, एक दिहाड़े जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पिया। ना पत्नी दा ख्याल, ना बच्चियां दा, ना रिश्तेदारां दा, ना सजना मित्रां दा कि आखरी वेले किसे नूं मिल ही लवां, नहीं। परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढ़ा है, जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नूं मिलण दा समा नहीं मिलदा। हुक्म बड़ा डाढ़ा है, आया हुक्म पार ब्रह्म का, छोड़ चलिया एक दिहाड़े, हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तू अपने प्यारियां नूं रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

अराज मिले जोबन ग्रैसो बा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड़ गया राज पाग जोबन जवानी ग्रह केंद्र ने कारण अपना कार सोबा सोना रूप सारा कुछ छड़ के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चा नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

जदू किसे दा कोई प्यारा मर जावे असी कह देने हैं सबर करो जो होना सी हो गया हुक्म सी परमेश्वर दा पर साथ संगत हुक्म मनना कोई सौखा नहीं ए भी सच है एक दिन मरना है पर ए भी तां सच है कि विछोड़ा सहना बड़ा औखा है इस दुख दा उन्हों पता है जिदा कोई मरे क्योंकि गुरु साहिबा ने इस दर्द नूं समझिया अगर किसी औरत दा पति मर जाए मां दा पुत मर जाए उस दुख नूं गुरबाणी विच साहिब जी बयान करदे ने ओ मां जिदा पुत्र जिन्हों ने बड़े चा नाल पालिया कहिंदे ने हर मां बाप की इच्छा हुंदी साडा पुत्र वड्डा होवे जदों असी मरीए ये सानू मोढ़ा देवे पर ऐसे मां बाप नूं जदों ये पता लगे कि साडा पुत्र मर गया ते उन्हां दा दुख की हो सकदा है कबीर साहब जी बयान करदे ने देहुरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए पाई वेड़े विच बैठी मां रोंदी पई है जिस पुत्र नु पालिया जानदा तां मेरा समा सी उस पुत्र नु मरिया देखिया जिन्नू चार भरा आए चुक के लै तुरे एक पासे मार हो रही है।

एक पासे वाल खलार के औरत पई रोंदी है जिदे सिर दा साईं चला गया ओदे दुख नूं कौन समझ सकदा है। साहब जी धन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने औरत भी पति नाल ही सोंदी है जद तक पति जिउंदा है आदर सारे देंदे ने पति ना रवे ते दुनिया विच जीवन जीवना बड़ा औखा हो जांदा है।

बंके कहते ने पति जिन्ना दे पति मर गए जिन्ना वापस नहीं आना उन औरतां दे बारे साहब जी कहते ने तेन क्यों रहन विहानी उन्हां दियां रातां हुण किवें बीतन क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा। साहब जी बाणी विच बयान करदे ने ओ पत्नी किवें जीवन बितावे जिहदा पति एक वारी गया ते मुड़ के वापस नहीं आया।

कदी हसो ना, क्यों मौत एक सच्चाई है, जीवन झूठ है। असी लोग मौत नू भुला देने हैं, पर मौत इंसान नू कदी नहीं भुलदी। समय नाल ओ आके ले जांदी, क्योंकि ओदा हुक्म बड़ा डर। पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है, तन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने। औरत दे दर्द नू समझिया, अपने आप नू फिर कहन लगे, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, तू मेरा पति है। जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं, तू मेरा पति है, तेरे बगैर मेरा जीवन

सारा संसार सौंदा है, पर मैं किवें सौवां। हाली ते आस सी तेरे नाल बड़ा जीवन बताना है, पर तू तो विच ही साथ छड़ गया। तू नहीं ता साहब जी कहते ने दुनिया एक बियाबान जंगल लगता है, ते ओ मां जिदा पुत ना रवे उदा जीवन कैसा। कहंदे ने एक वरी हिंदुस्तान दा बादशाह जिदा नाम अकबर, अकबर दी जदू मां मरी अकबर बड़ा रोया। दरबारी कहन लगे बादशाह तू क्यों रोना है, तू हिंदुस्तान दा बादशाह है, जहां पना आली जा दिले इलाही शहनशाह। अनेक नामा नाल दुनिया तुहानू याद करदी सलाम करदी, तुसी क्यों रोंदे। अकबर बादशाह ने बड़ी कमाल दी गल कही, कहन लगा बादशाह कहण वाले शहनशाह कहण वाले तो बहुत ने, पर इको ही सी मेरी मां जिहड़ी क्या करदी सी वे अकबरा। हुण इस करके रोना के वे अकबरा कह के कौन बुलाएगी, क्यों जद मां कहंदी सी वे अकबरा ता मेरा मन खुशी नाल झूम उठदा सी। जो मां दी झिड़क विच भी आनंद है वो दुनिया दी

अपनी गलवकड़ी विच लै के दूर कर दिंदी। इस वास्ते के है कि मां बाप नियामत ने विछोड़ा किसी दा भी पवे विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। मां मरे प्यो मरे पुत्र मरे पत्नी मरे चाहे पति मरे पर साहब जी कहंदे ने ए भी सच है मरना जरूर है ए भी सच है कि दुख सहना बड़ा औखा है। इसे वास्ते ए बाणी दिती है कि परमेश्वर दा सिमरन करो दुनिया नू नाशवान समझो ताकि इस दुख नू तुसी सह सको ए समझ सको। ए हुकम सी जिड़ा आया है उन्हें जाना जरूर है। एक दिन असी भी जाना है।

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान यह चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावा, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनु सलाम करे। इंसान लड़ाइयां जितता है, तरक्कियां करता है, बड़ा कुछ बना भी लेंदा है, ए भी कहंदा है हों मारो हों बंदो छोड़ो, मुख ते एव बबाड़े। मुख कहंदे ने मोन, मोत ए भी कहंदा है मैं जिनू चाहवा उनू मार सकदा, जिनू चाहवा उनू छड़ सकदा। पर साहब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल भी सलाह करके सौंदा है,

राख पिता प्रभ मेरे मुहे निर्गुण सब गुण तेरे पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे खेद करे अर बहुत संतावे आयो शरण तुहारे कर कर हार्यो अनक बहु पाती छोटे कथु नाही एक बात सुनता की ओटा साथ संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया संती मंत दियो मोहे निर्भव गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया प्रगासा पाया पद निर्वाणी।

पावन शब्द पावन राग साडे सत्कारयोग प्रोफेसर साहब प्रोफेसर अमर सिंह जी भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब भाई दया सिंह जी पटना साहब वाल दे प्राता साहब ने वह भी गुरु की हजूरी विच सुशोभित ने साडे हंसलो तो आए दलजीत सिंह जी वैनकूवर तो वीर जी आए ने तो बड़ा दर्शनदार संगत दे होए ने तो संगत वालों हुक्म आया सी कि राग 10 मिनट जरा ज्यादा लाने ने तो ये सोरठ राग दे विच आप जी ने शब्द सरवण किया है तो आओ दो तीन रीतां जरूर गायन करनिया सन पर संगत वालों हुक्म है कि एक दो रागां दी बंदिशां जरूर सरवण करवाउणियां हन इस तो पहला एक रीत फिर गायन करांगे पहला आओ एक नौ मात्र दी बंदिश है आप जी दे सन्मुख बहुत ही सुंदर है पुरातन चीज है और बड़े प्यार नाल सरवण करो।